0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: होशियार रहे, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 4 o'clock.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।

0: training in a new career or looking for a challenge in development, start your career for life with EAST. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
1: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
2: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
3: You could offer a quality service that really is second to none.
4: Or you could have offers that are simply unbeatable.
2: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
5: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
2: Has it clicked yet?
5: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
7: Please do not message or call, as the following programme is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
8: Inspire FM Luton or website www.inspirefm.org. The Family Matters Show, जिसको आप काफी दिनों से सुन रहे हैं, अब हम आपके साथ लाइव हैं. और लाइव होने का मतलब ये है कि हम आपकी कॉल्स भी ले सकते हैं और आप इस प्रोग्राम में अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई एम हाजरा खान और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं
9: अफशा इरफान. एंड वेलकम to Family Matters Shows, another episode, another topic, जिसपे कि आज हम discussion करेंगे. पिछली अगर आपने हमारी कुछ सुनी हो Family Matters Show की episode, तो हम एक family के, एक खानदान के, एक जो एक खानदान होता है, घर होता है, उसके मुख्तलिफ इश्यूज पे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं. हमने कम्युनिकेशन को भी किया, हम लोगों ने मुख्तलिफ चीजें इसमें डिस्कस की थी. तो आज भी इसी सिलसिले की एक टॉपिक है, इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसको हम डिस्कस करेंगे और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं हमें लाइव कॉल करके. तो उसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं
8: जो कि है 07779481822 01582481822. वी आर गोइंग टू वेट फॉर योर कॉल्स मैसेजेस. And if you want to contribute to the show, if you want to leave any feedback, or feedback se yaad aaya Afsha, because it's been like a while since our show is on air now, the recorded episodes, to hame uska bahut acha feedback aa raha hai from all over the UK and even from Pakistan. Jo log hame sun rahe hain, they are giving us a very positive feedback that the show, the topics, the show, the show itself, Family Matters, is so relevant to their everyday life. आप क्या कहती हैं?
9: बिल्कुल, इसमें हम मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करते हैं. एक खानदान में जो चीजें होती हैं, उस खानदान को बनाने में जो चीजें होती हैं और उस खानदान को चलाने के लिए जो अहम पॉइंट्स होते हैं, हम बेसिकली वही डिस्कस कर रहे होते हैं. और जो बात भी होती है वो हमारे डे टू डे लाइफ से के साथ मिलती है. इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि जो सिर्फ मेरे घर की है या आपके घर की. ये हमारा जनरल फैमिली प्रोग्राम है, एक वो प्रोग्राम है जिसमें सब कुछ वो होता है जो एक आम फैमिली के घर में होता है. एक आम, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे वो सिंगल पेरेंट हो, एक्सटेंडेड फैमिली है, हम हर फैमिली को कवर करने की कोशिश करते हैं.
8: बिल्कुल. और उसके साथ अफशा, क्योंकि आपने बताया कि हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, विच इज सिबलिंग्स. ठीक है,
9: बहन भाई.
8: बिल्कुल,
9: बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई.
8: एग्जैक्टली. और ब्रदर्स, सिस्टर्स, ओल्डर सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, हाफ सिबलिंग्स, स्टेप सिबलिंग्स, अडॉप्टेड सिबलिंग्स, एंड इवन दोज पीपल हु आरंट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू अस,

0: होमलेस नेस में हम पे ना आ जाए, कोई ऐसा ना कि
1: हम्म,
0: बच्चा में दे हैव दिस फियर, जिसकी वजह से वो कभी कभी अपने बच्चों में एक तरह से फर्क कर लेते हैं, ठीक है, एक को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया, एक को बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। दूसरी बात, अगर आप बेटियों की बात करें कि तो देखें, आप भी बेटी हैं, मैं भी बेटी हूँ, ठीक है, तो हम बाज़ औक़ात अपनी, शायद पेरेंट्स के दिल में ये भी होता है कि अपनी जिम्मेदारियों से नहीं निकल सकेंगे, जो कि आप अंदाजा कर सकती हैं कि हमारे ऊपर हमारे घर की जिम्मेदारी होती है। हम बाज़ औक़ात, और इतनी दूर भी हैं, आपके पेरेंट्स
1: इमिग्रेंट
0: पाकिस्तान में हैं, मेरे
1: फैमिलीज,
0: अमेरिका में
1: एग्जैक्टली,
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: तो बहुत दफा ऐसा वक्त आता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए वो नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह मेरा भाई है, वो वहां पे रहता है, वो फौरन विद इन मिनट्स पहुंच जाता है अम्मी के पास उनका ख्याल रखने के लिए। सो है, ठीक है, मतलब दिस पॉइंट्स आल्सो कम कि हम बेटियों के ऊपर अपने ससुराल की जिम्मेदारी भी होती है जो कि हमने पूरी करनी होती है। तो मैंने कहा ना, ये फियर होता है पेरेंट्स के जहन में, माँ बाप के जहन में, कि ये तो अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों में फंस जाएगी, फिर हमें कौन पूछेगा, तो वो बेटे को ज्यादा टाइम लगते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अगर यही चीज पेरेंट्स डिस्कस करके करें, कम्युनिकेशन, सेम पॉइंट, कि अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो गलत फहमियां पैदा नहीं होंगी।
1: एग्जैक्टली. 0777948182. वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक, योर क्वेश्चंस, योर मैसेजेस, योर कॉल्स दैट वी कैन टेक लाइव ऑन आर शो. इस चीज को छोड़ के बेटा है, इसको प्रायोरिटी दो. वी कम अक्रॉस सो मेनी अदर थिंग्स के एकेडमिक अचीवमेंट इस बच्चे की अच्छी
0: बिल्कुल
1: है, स्पोर्ट्स एंड टैलेंट्स में अच्छा है, अपीयरेंस अच्छी है उसकी, या दिखने अच्छा दिखता
0: हाँ,
1: है, ठीक
0: हैंडसम
1: है.
0: बच्चा है भाई
1: उसके अलावा इसने अपना करियर बना लिया है, फाइनेंशियल उसके सर्क्यूमस्टेंसेस अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं, और इन बोथ केसेस पेरेंटिंग का आपका क्या स्टाइल रहा है जिसने आपके बच्चों को डिफरेंशिएटेड उसमें स्टेटस पे लाके खड़ा कर दिया है. बच्चे का सोशल स्टेटस क्या है आपका, और हु इज सीन एज द सक्सेसफुल चाइल्ड. ये सारी वो चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स आर
0: अनइंटेंशनली करते हैं
1: जजिंग
0: कंपैरिजन।
1: देयर चिल्ड्रन ऑन
0: हाँ हाँ
1: समटाइम्स.
0: अच्छा, इसमें ये भी होता है ना कि बाज़ औक़ात अगर कोई लाइक बच्चा है, जिस तरह, ठीक है, अब बेटी हो या बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक बच्चा है, ठीक है, तो उसमें भी पेरेंट्स, वो बच्चे चूंकि वो लाइक है, नंबर अच्छे ले रहा है, तो डेफिनेटली बच्चों, पेरेंट्स का ज्यादा झुकाव उसकी तरफ हो जाता है, वो समझते हैं इससे आगे तो कोई है नहीं। कभी कभी ये चीज भी आ जाती है, कभी कभी वही बात है आप वाली, कि बड़ा हैंडसम बच्चा है, खूबसूरत है, सब तारीफ कर रहे हैं, नेचुरली झुकाव उस तरफ आ गया। और कभी कभी ये होता है कि अगर सारे बहन भाइयों में से कोई बच्चा कमजोर है, बीमार है, या इमोशनली कमजोर है, तब भी पेरेंट्स का सारा झुकाव उसकी तरफ आ जाता है। नेचुरली पेरेंट्स हैं वो जो कमजोर बच्चा देखते हैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश में वो बाकी सारे बहन भाइयों के साथ ज्यादती कर जाते
1: ओवरलुक
0: हैं,
1: कर जाते हैं उनको.
0: ठीक है ना। इसी तरह होता यह है कि जब बहुत रिस्पॉन्सिबल है तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, बाकी वो उसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है, उसमें भी उसके साथ ज्यादती हो जाती है। अब और बाज़ औक़ात होता है कि नहीं, ये बड़ा भाई है, इसके तो आगे जी हुजूरी करनी है, तुम लोगों ने इसके आगे बोलना नहीं है, ठीक है। माँ बाप का ये ख्याल होता है, ये बड़ा भाई है या ये बड़ी बहन है, ये माँ बाप की तरह बाकी बहन भाइयों को संभाल लेगी या संभाले, उसमें भी वो ज्यादती कर जाते हैं।
1: तो फिर मेरा ख्याल है कि वी हैव टू गो बैक टू दैट अगेन, हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन, हैविंग अ
0: एग्जैक्टली
1: वेरी क्लियर कम्युनिकेशन विद आवर फैमिली मेंबर्स, जहाँ पे और आपके दरमियान में अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो गिव इट अ क्लोजर, ठीक है,
0: हाँ
1: ताकि अगले आपके बहन को या भाई को या पेरेंट्स को पता हो कि अगर कोई बात, कोई डिसएग्रीमेंट अगर इट हैज स्टार्टेड तो इट हैज कम टू एन एंड ऑल्सो, इट इज नॉट लाइंग इन द मिडल ऑफ समथिंग. ठीक है, क्लोजर दें अपनी बात को, ताकि बच्चों को पता चले कि अगर कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था, अगर मेरे भाई ने मेरे साथ कोई ज्यादती या मेरी बहन ने मेरे साथ कोई भी इनजस्ट किया था, तो माई पेरेंट्स टैकल्ड इट एंड माई पेरेंट्स डिड इट वेरी दे जस्टिफाइड इट, ओके, और उन्होंने अच्छे तरीके से उसको किया था. डोंट लीव थिंग्स इन बिटवीन.
0: बिल्कुल, असल में देखें, माँ बाप सिर्फ बनते नहीं हैं, माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी भी आती है एक खानदान को, एक फैमिली को जोड़ कर रखने की।
1: आपको प्रैक्टिकली करके उसको, यू हैव टू शो इट थ्रू मॉडलिंग, और आपको प्रैक्टिकली करके बताना
0: बिल्कुल
1: पड़ता है.
0: बिल्कुल, आपको अगर अगर आपके आपके बच्चे हैं तो आपको उनको इवनली सबको एक जैसा ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि इधर ज्यादा तवज्जो दे दी, उधर कम दे दी। और इसी चीज में जब बहन भाई बड़े

0: होते हैं ना, तो वो नेचुरली उनके दरमियान एक एक वो आ जाता है, खिंचाव आ जाता है कि अम्मी उसको ज्यादा पसंद करती थी, हर चीज उसके लिए लेके आती थी, मुझे तो कभी पूछा ही नहीं, ठीक
1: बिल्कुल,
0: है,
1: उसको केक का बड़ा पीस मिल गया,
0: मुझे छोटा
1: मुझे
0: दिया,
1: छोटा
0: उसकी
1: दिया।
0: बर्थडे दो बर्थडे की, मेरी
1: हाँ बिल्कुल,
0: एक की। अब होता है, होता है,
1: दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स एंड
0: बेसिक
1: दीज
0: थिंग्स।
1: आर वेरी पेटी मैटर्स, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि जिस बच्चे के साथ ये पेश आ रहा है उसका दिमाग छोटा सा है, और इट इज जस्ट यू नो पेस्टिंग इट्स इम्प्रेशन इन इट्स माइंड, और
0: दूसरी
1: बड़ा बड़ा सख्त इंप्रेशन उसके दिमाग में आ जाता है जो कि बड़े होने तक साथ रहता है बच्चे के।
0: दूसरी बात ये देखें कि आप अगर हमारे माशरे में देखें, तो जिस तरह आपने अभी बात की थी कि भाइयों को ज्यादा अहमियत दी जाती है और भाइयों को वो कंट्रोल दे दिया जाता है बहनों के ऊपर, माँ के ऊपर, कि जो उनको नहीं देना चाहिए। देखें, हमारे माशरे में आमतौर पर तो बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो हर चीज पे कंट्रोल करने लगता है, उसको इस तरह से बड़ा किया जाता है कि वो जरा सा बड़ा होता है, टीनेजर में आता है तो वो घर के फैसले कर रहा होता है, वो अपनी बहनों के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, मतलब उनके ऊपर एक तरह से आप कह लें उनको गाइड तो करना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ज्यादती कर रहा होता है। यहाँ नहीं जाना अक्सर होता है, ये यहाँ नहीं जाना अम्मी, आपने फलां जगह पे नहीं जाना, बस मैं कह रहा हूँ, या अम्मी ये बहनें मेरी नहीं जाएंगी, बस इवन की फैमिलीज में भाई पढ़ाई छुड़ा देते हैं कि नहीं अब हमारी बहनें और नहीं पढ़ेंगी, हम क्योंकि हम कह रहे हैं। तो देखिए, बेटा हो बड़ा हो, लेकिन उसको उसकी हद में रखना पेरेंट्स का काम है।
1: तो उसमें यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज हमारे सामने आ रही है कि अब आपने अगर अपने बच्चे को जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसी सिबलिंग को जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो डू इट ग्रेजुअली, ठीक है, और आप अपनी उसकी एज के हिसाब से
0: एज के हिसाब से दें और लिमिट्स रखें, उसकी जिम्मेदारियों की भी लिमिट्स रखें।
1: उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी लिमिट रखें, और उसको एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, डोंट गो बियॉन्ड, डोंट ओवर बर्डन देम, ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव लोड भी जब आपके पास जिम्मेदारियों का बोझ आपको आपके पास आ जाता है, तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। दूसरी बात यह कि बच्चे को अगर आप जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उस पर चेक रखें, उसको इतनी खुली वो मत दें, आजादी दें कि वो जब घर के फैसले करो उस फैसलों की वजह से किसी की हक तलफी हो रही हो, ठीक है, किसी का दम घुटने लगे, कोई बच्चा तांगा आ जाए कहे कि भाई क्या है भाई, मतलब जब हमारे पेरेंट्स हैं हमसे बात करने वाले तो भाई को क्या जरूरत है हम पे हुक्म चलाने की, हमारा रास्ता रोकने की। तो अगर आप अपने बच्चों में कोई जिम्मेदारी या अगर उनको घर का बड़ा बनाते हैं तो याद रखें कि उससे बड़े पेरेंट्स हैं, जरूरी नहीं कि वो हर चीज का हर चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन करे या वो हर चीज की डिसीजन ले, एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है।
1: चलते हैं हमारे नेक्स्ट चंक की तरफ, अफशान, जो कि है जेलसी एंड केयरिंग फॉर यंगर सिबलिंग्स। आप जब एक बच्चा है 3-4 years old, 5 years old, और उसके घर एक छोटा बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर आ
0: हाँ
1: जाते हैं,
0: हाँ
1: ठीक है, व्हाट हैपेंस देन?
0: मेरे घर में था, मेरे घर में तो बिल्कुल ऐसा ही था, मेरा बेटा 2.5 साल का था जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो ऑटोमेटिकली मेरा बेटा बड़ा हो गया, ठीक है, वो इस तरह से कि जब मैं उससे कहती थी बेटा तुम 1 मिनट ठहरो मैं पहले बहन को देख लूं,
1: एंड वाज ही एबल टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम?
0: वो खामोश होकर बैठ जाता था, ठीक है, दैट हैज मेड हिम मेच्योर एट अ वेरी यंग एज,
1: वेरी यंग एज,
0: ठीक है। कभी कभी मुझे भी अफसोस होता है कि मैंने इसका बचपन खराब किया है, वो क्यों, क्योंकि वो छोटा था ना, तो अक्सर आपको पता है हम एक तरह से परदेश में रहते हैं, हमारे पास कोई हेल्प नहीं होती है, तो हमारा ज्यादातर सपोर्ट सिस्टम जो होता है हमारे घर का बड़ा बच्चा आ जाता है, ठीक है, तुम बड़े हो तुम जरा बहना की देखो, अच्छा ये रोए नहीं, मैं खाना बना रही हूँ, तुम जरा बहना का फीडर पकड़ो, ये फीडर फिनिश कर ले तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि मैं जो है तो सफाई कर रही हूं, मैं खाना पका रही हूं, मैं कोई काम कर रही हूं, तो हम उसको एक छोटी एज से ही हम उसको एक डाल देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर, ठीक है, बचपन में छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डब्बा पकड़ा दो, इसका नेपी ले आओ, इसकी ये चीज, लेकिन एक तरह से इनकी प्रैक्टिस भी होती है केयरिंग की, लेकिन साथ साथ ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मेरा तो यह था कि जब मैं अपनी बेटी को शावर देती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी, तो मेरा बेटा उसके ऊपर डोल पानी के डालता था.
1: लेकिन जब हम बेबी कोई आता है घर में नया और उसको कहते हैं लुक एट द बेबी, शी इज ब्यूटिफुल और ही इज ब्यूटिफुल, यू आर अ बिग ब्रदर और यू आर अ बिग सिस्टर नाउ, एंड द ओल्डर ब्रदर स्टार्ट्स टू थिंक वेयर इज माई अटेंशन नाउ बिकॉज एवरीबडी वॉज पेइंग अटेंशन टू मी, वेयर इज माई अटेंशन नाउ. तो उसमें हमारे पास बेबी जेलिसी, जिसमें देखा गया है कि वो समटाइम्स दे ट्राई टू हार्म
0: पिंच.
1: पिंच कर जाते
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: ठीक है,
0: बिल्कुल, वो तो
1: और
0: होता है
1: शेयरिंग देयर पेरेंट्स अटेंशन, दे कांट
0: बिल्कुल.
1: शेयर देयर पेरेंट्स अटेंशन, कंपेयरिंग अचीवमेंट्स अब समटाइम्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज द पेरेंट्स आर स्टार्टिंग कंपेयरिंग देयर चिल्ड्रंस अचीवमेंट एज वेल, कि उसने तो अभी ये पूरा खाना खा लिया है और तुम तो अभी तक खा
0: बैठे
1: भी
0: हुए
1: नहीं
0: हो.
1: पा रहे,
0: हाँ यही होता
1: और
0: है.
1: ये दे हैव ग्रोन सो मच इन देयर क्लास एंड यू आर स्टिल देयर एंड थिंग्स लाइक दैट. फीलिंग लेस अट्रैक्टिव, यंगर सिबलिंग रिसीविंग मोर फ्रीडम और ओल्डर सिबलिंग्स आर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दीज आर ऑल डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑन ऑन हाउ वी आर क्रिएटिंग दैट सिबलिंग जेलेसी अमंग आवर
0: अच्छा,
1: किड्स.
0: इसमें हाजरा आमतौर पर जो पेरेंट्स एज अ पेरेंट जो मैंने नोट किया है, मेरा तो ये था कि जब छोटी सो जाती थी तो आई विल गिव फुल अटेंशन टू माय सन. मैं उसके साथ गेम्स भी खेलती थी, मैं उसके साथ टाइम भी स्पेंड करती थी, उसके साथ बैठ के इवन क्या आई वॉच्ड ऑल द कार्टून्स विद हिम. व्हाई? कि उसको ये ना लगे कि बहना आ गई है तो अब अम्मी जो है तो डाइवर्ट हो गई है.
1: जो कि एक
0: मेरी
1: नेचुरल सी बात है.
0: नेचुरल सी बात है, आप
1: और
0: वो बेबी है डेफिनेटली. मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगी कि अगर आपका छोटा बेबी है ना, वो सोता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सोया रहता है, तो घर का काम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको बच्चे के लिए अटेंशन देना इम्पोर्टेंट है.
1: एग्जैक्टली. अफशा, वी आर गोइंग टू कैरी ऑन दिस डिस्कशन आफ्टर द ब्रेक. लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर ब्रेक. 07779481822. यू आर लिसनिंग टू इंस्पायर FM 105.1. यू आर लिसनिंग लाइव ऑन इंस्पायर FM.org. कीप ट्यून्ड इन एंड स्टे विद अस. वी आर गोइंग टू कम आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक विद द सेकेंड हाफ ऑफ आवर प्रोग्राम. सो डोंट गो अवे प्लीज.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. that Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
8: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے اونلی آن انسپائر ایف ایم
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
10: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.

0: Assalamu alaikum and welcome back to your own The Family Matters show جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں siblings کے بارے میں آپ کے siblings relationship your childhood rivalry to your adult reconnection اور break پہ جانے سے پہلے افشاں was talking about how you make your elder child responsible when you have younger children. لیکن اس سے پہلے آپ افشاں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سوال دینا چاہتی ہوں. Why do siblings become distant after they grow up? You can call us on 07-779-481-822-01582-481-822. You are listening to this show directly on inspirefm.org. And there's live stream on radio Inspire FM 105.1. تو افشاں سوری میں نے آپ کی بات کاٹی بریک پہ جانے سے پہلے, آپ اپنی بات ختم کریں تو پھر ہم نئے چنک کی طرف جاتے ہیں ان شاء اللہ.
1: ہم بات کر رہے تھے کہ وہی کہ پیرنٹس کو اگر دیتے ہیں کسی بچے کو ریسپانسبلٹیز تو اس میں لمٹس بھی ہونی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ جب بچے کو آپ ریسپانسبلٹی دے رہے ہیں تو یہ کہنے کی بجائے کہ بھائی تم بڑے ہو تم یہ ریسپانسبلٹی لے لو, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ ہماری ہیلپ کرنا پسند کریں گے, وڈ یو لائک ٹو ہیلپ اس اراؤنڈ دا ہاؤس, وڈ یو لائک ٹو ہیلپ اس ٹیکنگ کیئر آف دا نیو بیبی, ٹھیک ہے, اور یو آر ہم بالکل بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بڑے بھائی ہو, بٹ یو آر آلسو یو نو اے سپر ہیرو, a role model for this young ye bachcha jo hai bhi aap se sikhega.
0: Inclusion is so important, giving
1: encouragement wagera
0: na, encouragement, this is what the child is always looking forward to.
1: So definitely uske andar ek ye cheez aa jayegi na ki acha main acha karu, aur jab wo acha kaam kare koi bhi acha step le koi bhi to usko bahut zyada encourage kare.
0: Do encourage them, do appreciate them because they are making their 100% efforts, no doubt. So why do adult siblings drift apart? Humne chote behan bhaiyon ki baat kar li ke chote hote hain, toddlers hote hain, school going hote hain, to how parents actions are leaving impressions on their minds. To jab hum bade siblings ki baat karte hain, adult siblings ki baat karte hain, why do they drift apart, how do they drift apart, aisa kya hota hai, is there any financial thing going on, ya phir wo physically they are living in other countries, different countries, ya phir میرج آ جاتی ہے بیچ میں جو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کرنے دے رہی ہوتی, یا پھر ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں, اپنی فیملیز ہوتی ہیں, اپنی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. افشاں آپ کیا کہتی ہیں کہ اس کے بارے دیر از اے لسٹ آف تھنگس.
1: بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں جب تک آپ ایک گھر میں رہتے ہیں نا, ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, قریب رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے درمیان ٹائم ڈفرینس, باؤنڈریز, یہ کنٹری کی باؤنڈریز یا وہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, آپ کے فائنینشیل ایشوز نہیں ہوتے, کیوں پیرنٹس آر پیئنگ فار ایوری تھنگ, یو آر جسٹ لیونگ یور ڈریم لائف, ٹھیک ہے نا, کوئی ریسپانسبلٹی ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, یہ گرو اپ, پھر آپ کے اوپر آتی ہیں ذمہ داریاں, آپ کی جیسے کوئی بچے پڑھنے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں,
0: you step into the real world,
1: تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے, آپ اگر چلا گیا فرض کرے امریکہ ہے تو آپ پاکستان اور امریکہ کا تقریباً 10-11 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے, تو وہ کمیونیکیشن تو آپ کی ٹوٹے گی نا, اب وہاں پہ دن ہے وہاں پہ رات ہے. اسی طرح کوئی یو کے آ گیا, کوئی اسپین چلا گیا, کوئی کینیڈا چلا گیا, نمبر ایک تو یہ آ گیا, فاصلے آ گئے درمیان میں, اور یہ فاصلے یہ وہ نہیں ہوتے جو آپ کے دلوں میں ہوتے ہیں, یہ وہ فاصلے ہوتے ہیں جو وقت باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں, جو کہ
0: فزیکل باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں, پھر ٹائم باؤنڈ بھی ہو جاتا ہے.
1: بالکل, تو اسی طرح کوئی کہاں آ جاتا ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے, تو ساری بات ہے جب آپ کے درمیان, تو پھر وہ نہیں ہوتا کہ آپ دل سے نکل جاتے ہیں, بس آپ کا کمیونیکیشن تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے, اور جہاں جہاں پہ کمیونیکیشن کمزور پڑتا ہے وہاں پہ پھر فاصلے بھی پڑتے ہیں, یہ تو بالکل کامن سی بات ہے. دوسرا پھر آ جاتا ہے شادی. اب جب شادی ہوتی ہے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے ایک نئی لائف میں سیٹل ہونے کا, ठीक है, एक नए माहौल में जाने का, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक नए बंदे के साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट करना टेक्स टाइम, तो उसमें भी आपका कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसमें भी जारी बात है, अब आप खुद देख लें कितने कितने दिनों तक बात नहीं होती बहन भाइयों से, क्यों नहीं होती, हमारे अपने इतने प्रॉब्लम्स होते हैं या इतना हमने मैनेज करना होता है कुछ कि हम लोग नहीं उसको टाइम दे सकते।
0: अपार्ट फ्रॉम दीज फिजिकल थिंग्स, अफशा, व्हाट आई थिंक इज दैट अ पर्सन ग्रोज टू बी अ डिफरेंट पर्सन एज ही वॉज इन हिज चाइल्डहुड,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। एवरी पर्सन ग्रोज टू बी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन विद डिफरेंट वैल्यूज, मे बी फ्रॉम हिज सिबलिंग्स और हिज फ्रेंड्स, हिज फाइनेंशियल स्टेटस मे बी डिफरेंट, हिज करियर मे बी डिफरेंट, ही माइट बी इन अ डिफरेंट करियर, ही माइट बी मोर करियर ओरिएंटेड दैन हिज अदर सिबलिंग्स, ठीक है ना। बाज होता है कि आप कुछ कहते हैं कि जी अच्छा हम हल्का फुल्का सही काम कर लेते हैं तो वी आर गुड विद दैट, बट सम पीपल आर करियर ओरिएंटेड, दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर जॉब, देयर लाइवलीहुड एंड देयर हॉबीज एटसेट्रा, सम पीपल आर स्टक विद इन लॉज, सम हैव डिफरेंट फैमिली that they are raising, किसी के पास एक challenged child होता है जिसकी वजह से वो bound हो जाते हैं, for example, और long term misunderstandings, when you don't sort things out on a very low basic level, तो they grow up, they pile up by each day, by each hour.
1: देखिए इसमें वही मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन गैप हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और फिर फासले बढ़ते जाते हैं सबसे पहले तो। और इसमें मेन काम कौन करता है, कम्युनिकेशन ब्रिज कौन बनता है, पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं या उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश करें या उनका हल करें, तो डेफिनेटली फिर ये होता है कम हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात जो आती है, जो मेन वजह होती है अक्सर झगड़ों में, वो होती है फाइनेंसेस। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स ना चाहते हुए भी किसी एक बच्चे को बहुत कुछ दे जाते हैं, किसी को थोड़ा दे देते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई चलो वो तो अच्छा है, सेटल है, उसको अगर थोड़ा कम भी दे देंगे तो इस भाई या इस बहन का फायदा हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: और इसी में सारा अक्सर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आप कह लें झगड़े होते हैं या जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से दूर होते हैं वो फाइनेंस होता है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। सबसे मेन पॉइंट आता है फाइनेंस का, और फाइनेंस इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसाफ का हुक्म दिया है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि वसीयत लिखो, और अल्लाह ने हमें वसीयत लिखने का हल भी बताया, तरीका भी बताया है कि बेटे का कितना हिस्सा, बेटी का कितना हिस्सा, बीवी का कितना हिस्सा, क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस झगड़े को खत्म करने की कोशिश की है जो कि अक्सर पेरेंट्स बेदहानी में कर जाते हैं।
0: 0777948182 is our hotline. Afsha, we have just received a feedback from our very regular listener, Umaima and Taiba. Assalamu alaikum, Hajra and Afsha. I really wanted to appreciate you guys for such a wonderful show today. Which we the topic is something that we are always ignoring in our daily lives. Mashallah, keep it up. Also, I completely agree that sometimes we do put too much pressure on the eldest children, which make them feel too tired and exhausted. And youngest child is always to take all attention from the whole family. So, Taiba and Umaima,
1: thank you very much for your feedback. और बहुत अच्छा लगा, देखिए जब आप लोग हमें मैसेज करते हैं, आप लोग हमसे कॉल पे बात करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम आपके डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा हैं, जो हम बात कर रहे हैं ये आपके घर से हमारे घर से रिलेट करती है।
0: बिल्कुल, इट इज टोटली रिलेटेबल, एंड योर फीडबैक, योर इनपुट इज गोइंग टू मेक दिस शो मोर लाइवली, मोर रियल लाइफ थिंग दैट यू कैन एक्चुअली फील इन योर लाइव्स। तो हमें भी ऐसे ही फील करना है और हमें आपको भी ऐसा ही फील करवाना है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट फैमिली मैटर्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं कि व्हेन वी हैव सिबलिंग्स अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर्स, तो हम बिकॉज आर इमिग्रेंट फैमिलीज, जब हम दूसरे मुल्क में जाके बसते हैं तो हमारी अपनी फैमिलीज जो बैक इन द कंट्री होती हैं उनसे बेशक कि हम फिजिकली दूर होते हैं लेकिन हम नई जगह पे जाकर नए बहन भाई बनाते हैं.
1: बिल्कुल, जिस तरह हम लोगों ने बना ली. हम फ्रेंड्स भी हैं, हम बहनें भी हैं. तो ये तो है, आपके जो आसपास लोग होते हैं वो आपके बहन भाई होते हैं. अच्छा, आप बाज़ औक़ात आपके दोस्त जो होते हैं वो आपके बहन भाई से ज्यादा करीब आ जाते हैं. मतलब ये होता है कि वो आपके ज्यादा करीब होते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ रहते हैं. अगर आप पूरी दुनिया में फैले हुए हो, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई यहाँ, तो आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वो बहन भाई होते हैं जो आपके हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी में, हर गम में आपके साथ खड़े होते हैं और आप ज्यादा रिलाय इन पे करते हो. और दूसरी जो मेरा वो है, एक नजरिया है, वो ये कि ये बहन भाई चूंकि आपके साथ रहते हैं, आपके चोजन बहन भाई जिसको आप कह लो ना, फ्रेंड्स बहन भाई,
0: चोजन फ्रेंड्स, चोजन, हाँ,
1: चोजन फैमिली कह लें, तो ये वो बहन भाई होते हैं जो आपके साथ रहते हैं और ये आपकी सिचुएशंस को आपके बायोलॉजिकल बहन भाइयों से ज्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं आपकी सिचुएशन, क्योंकि आप इनके सामने होते हैं ना. आपके बाकी सारी फैमिली तो इधर उधर है लेकिन चूंकि ये आपके साथ हैं तो ये आपकी सिचुएशन को ज्यादा बेहतर असेस कर सकते हैं.
0: वो मुझे लगता है अफशा, द रीजन बिहाइंड दैट इज कि योर चोजन फैमिली या योर चोजन सिबलिंग्स, क्योंकि आज हम सिबलिंग्स की बात करें, दे डोंट हैव एनी म्यूचुअल थिंग टू शेयर विद यू. ठीक है, बहन भाइयों में तो आ जाते हैं ना, फाइनेंसेस आ जाते हैं या पेरेंट्स इज अ म्यूचुअल थिंग जो आ जाते हैं जिसका उनको एट द एंड ऑफ द डे टेक केयर भी करना पड़ता है. और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे और उसके बाद बाज दफा ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स किसके पास रहेंगे. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली. तो जब हम फ्रेंड्स जो हमारे सिबलिंग्स जैसे होते हैं उनके साथ हमारा कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होता जो हम शेयर कर रहे होते हैं, इसी वजह से वी ऑलवेज गो स्ट्रेट टू देम बिकॉज दे वॉन्ट जज अस एंड दे आर दे विल लेंड अस देयर ईयर 100%.
1: बिल्कुल, ये होता है, ये होता है. मैंने कहा ना वो आप, अच्छा बाज़ों का ये भी होता है कि जो आपके बहन भाई हैं जो दूर रह रहे होते हैं आप उनसे कोई सिचुएशन डिस्कस करते हैं. अब बात ये आ जाती है कि वो दे आर नॉट हेयर, दे आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो आपकी सिचुएशन को वो उस तरह से असेस नहीं कर सकते जिस तरह से कि आपके जो नेबर्स हैं या जो आपकी यहाँ के फ्रेंड्स हैं वो कर सकते हैं. उसमें भी गलत फहमियां आती हैं क्योंकि आप जो बयान कर रहे होते हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन रियलिटी उनको नहीं पता होती.
0: They can't see in your shoes.
1: बिल्कुल. और उसमें अक्सर बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम लड़कियों के साथ ज्यादा आता है क्योंकि बेटियां हर बात अपनी माँ से शेयर करती हैं. एक नॉर्मल सी बात है, हर घर में यही होता है अपने दुख, लेकिन वो ये भूल जाती हैं बाज़ों का शेयर करते हुए कि वो यहाँ पे सिचुएशन देख नहीं रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं वो उसके हिसाब से एडवाइस कर रहे हैं. ठीक है, उसमें आप जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फिर सारी बात है वो जो मशवरा देंगी डेफिनेट जरूरी नहीं कि वो आपको हेल्प करे, वो कभी कभी आपको नुकसान भी दे जाता है.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपकी
1: वो आपकी तकलीफ देख रहे हो ना, बेटी की तकलीफ देख रहे होते हैं.
0: एग्जैक्टली, अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता वो आपके सर्कमस्टेंसेस के अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता. बिल्कुल. एंड दे वोंट गेट एन आइडिया क्योंकि जब तक आप शूज पहनेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि शू कितना तंग है या खुला है.
1: बिल्कुल. और अक्सर देखिए मैंने कहा ना बदकिस्मती से ये बेटियों से ज्यादा होता है. पेरेंट्स बेशक अपनी बेटियों का भला चाह रहे होते हैं, वो उनको एडवाइस कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हालात वाकयात उससे डिफरेंट होते हैं जो एडवाइस आती है. तो मैं तो मतलब मैं एडवाइस नहीं कर सकती, हर बंदे का अपना वो है, मैं किसी को सजेशन भी नहीं दे सकती. लेकिन मेरे ख्याल में हम माओं को थोड़ा सा इस चीज का एहसास होना चाहिए कि बेटियों के जो मामलात होते हैं उन पे एडवाइस दें, लेकिन साथ उनको कहें कि बेटे अपने जो हालात हैं उनको असेस करके तब कोई फैसला करना.
0: एग्जैक्टली
1: क्योंकि हम उनके घरों में, हम अपनी बेटियों के घरों में नहीं बैठे होते.
0: बिल्कुल
1: ठीक है, हमें नहीं पता होता वहां सिचुएशन क्या है. हो सकता है गलती हमारी अपनी बच्ची की हो, हमारी अपनी बेटी की गलती हो, लेकिन चूंकि वो ये समझ रही है कि दूसरे की गलती है, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं दूसरे की गलती है, तो वो चीजें और वो बातें
0: एस्केलेट हो सकती हैं,
1: बिल्कुल बिगड़ सकती हैं. और ये चीज वो होती है जब आगे जाके फिर भाई बहनों में झगड़ा आता है कि नहीं अम्मी आपने उस वक्त गलत मशवरा दिया था, आपने गलत कहा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई और इसकी इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे घर पे भी इफेक्ट पड़ा है. ठीक है ना.
0: तो हम अनफॉर्चुनेटली हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम. इट्स अ वेरी लाइवली डिस्कशन और अफशान आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू लीव इट हेयर. तो व्हेन अ सिबलिंग रिलेशनशिप ब्रेक्स, ठीक है, बड़े हो रहे हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते जा रहे हैं, ठीक है, किसी कोई अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई थोड़ा फाइनेंशियली कम है, कुछ कुछ की फैमिली बड़ी है, दे हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कुछ के स्मार्ट फैमिली है, एक या दो बच्चे हैं, ठीक है, और कुछ बहुत अच्छे से रह रहा है, अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा नवाजा हुआ है, और कुछ जो है वो थोड़ा सा
1: स्ट्रगलिंग फेज में है,
0: स्ट्रगलिंग फेज में है, ठीक है. किसी ने अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखा हुआ है, कोई जो है वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रह रहा है, और इसी तरह किसी की करियर ओरिएंटेशन दे आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट देयर करियर एंड एवरीथिंग, और कुछ जो है वो अपना थोड़ा सा हल्के फुल्के में भी खुश हैं जो उनके साथ चल रहा है. तो ऐसी सारी सिचुएशंस में आपके जब सिबलिंग के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और आपका एक ब्रेक आ जाता है रिलेशनशिप में, ठीक है, हाउ टू फिक्स दैट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट नाउ. और उसमें उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अफशा सिबलिंग्स आर दैट रिलेशन दैट यू कांट चूज, और वो आपके मरते दम तक आपके साथ, बेशक आप कहें कि जी मैं तो अभी लड़ाई हो गई है, अब तो हमारा जो है कोई अगले कुछ अरसे तक हम तो आपस में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन द रियलिटी इज दैट यू कांट से दैट यू डोंट हैव एनी सिबलिंग्स. ठीक है,
1: देखिए ये कहना कि हमारी जान छूट जाती है बहन भाई से, ये जीना मरना खत्म हो जाता है, ये गलत है.
0: बिल्कुल
1: वही बहन भाई अगर खुदा ना खास तौर में से कोई एक भी चला जाता है, फिर सारी जिंदगी का पछतावा रह जाता है. ठीक है ना. तो मेरा मैं तो यही कहूंगी कि देखें सबसे पहले आपको अपनी अना खत्म करनी पड़ती है. रिश्तों में अगर अना हो, ईगो हो, तब फिर रिश्ते आपके नहीं चल सकते हैं. तो अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं बड़ी हूं, वो पहले मुझे फोन करे, ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करूंगी, तो ये तो गलत है. अगर आप बड़े हैं, अगर आप खुद को बड़ा समझते हैं, तो कभी कभी बड़ों को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, आगे होना चाहिए, ताकि वो बाकी सारे बहन भाइयों को इकट्ठा कर सके.
0: एग्जैक्टली इस चीज को सोचे बगैर कि हु शुड मेक द फर्स्ट मूव, यू शुड मेक द फर्स्ट मूव, डू योर सेल्फ मेक द फर्स्ट मूव टू सेव द रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स. और उसके बाद जैसे हमने कहा कि you can't say that you are breaking your relationship with your siblings forever. It can't happen because they are your lifetime relationships. Program today 0777948182. You can still call us and leave us with your feedback. You're listening to Inspire FM 105.1. We were talking about why adult siblings drift away from each other. How do they? What makes their bond weaker? Or when their relationship breaks? हमने काफी सारी reasons को discuss किया. बिल्डिंग ब्रोकन सिबलिंग बॉन्ड्स क्या करना चाहिए, समथिंग प्रैक्टिकल दैट दे आर लिसनर्स शुड टेक अवे फ्रॉम टुडेज डिस्कशन.
1: वो अभी हमने इसी पे बात कर रहे थे कि अगर आप घर में सबसे बड़े हैं ठीक है, तो इसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है कि आपको सब बहन भाइयों को थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ता है. देखिए ईगो जो होती है ना वो उस वक्त तक अच्छी लगती है जब तक आप लोग मिलजुल के रहें, और उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए, उसमें प्यार मोहब्बत होना चाहिए. आप बड़े हैं, सब आपका रिस्पेक्ट करना उनका फर्ज है और करना भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को लेके चल रहे होते हैं एज एन एडल्ट. ठीक है, द एडल्ट सिबलिंग, सब बहन भाइयों आप पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है. लेकिन जहां पे बड़ी जिम्मेदारी आती है या बड़ी ताकत आती है या वहां पे आपके ऊपर और चीजें भी आती हैं, मेरे ख्याल में अगर हम ये छोड़ते हैं कि नहीं मैं बड़ा हूं, मैं वो छोटा है, पहले वो फोन करे फिर मैं उसको फोन करूं, ये बात फिर वो फिर ऐसे रिश्ते नहीं चलते.
0: Exactly, yes. because you are having your family life, you are your sister or brother, they are having their own family life. Come in between areas where you can no longer disagree to anything.
1: क्योंकि देखिए अगर अभी आप ना करेंगे या अभी आप बात नहीं करेंगे, कल को खुदा ना खास्ता कोई बहन या भाई चला गया तो फिर सारी जिंदगी का एक गिल्ट रह जाता है.
0: एग्जैक्टली
1: कि काश मैं पहले हिम्मत कर लेता, मैं बात कर लेता.
0: दिस इज सो ट्रू अफशा. और आई वुड सजेस्ट के स्टार्ट स्मॉल. इफ यू हैवंट टॉक्ड टू योर सिबलिंग फॉर लाइक 5 years, 10 years, व्हाटएवर इज द टाइम, स्टार्ट स्मॉल. आफ्टर ऑल दे आर योर सिबलिंग्स, दे ऑल्सो हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू इन देयर हार्ट. ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. जस्ट से आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, आई होप यू आर ओके, दैट इज इनफ टू ब्रेक द आइस.
1: बिल्कुल. okay. कभी कभी एक मैसेज, एक सलाम का मैसेज, एक ईद मुबारक का मैसेज, एक हाल पूछने का मैसेज जो होता है ना, वो सदियों की, अगर सालों की भी आप लोगों की टूटी हुई है कम्युनिकेशन, उसको रिवाइव कर देता है.
0: एग्जैक्टली. एंड लिसन बिफोर डिफेंडिंग योरसेल्फ, बिफोर सेइंग दैट बिकॉज यू डिड दिस सो आई डिड दैट, बिफोर
1: डोंट गो इनटू द पास्ट,
0: बिकॉज यू सेड दैट, दैट इज व्हाई आई सेड दैट, डोंट go into the past. Exactly. Don't start talking about the thing that has gone.
1: बिल्कुल. जो हो गया सो हो गया, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं. देखिए अगर आप लोगों ने रिश्ते बचाने हैं ना, तो आप लोगों को माजी को छोड़ना पड़ता है.
0: Exactly. Separate the past from the present. Acknowledge feelings.
1: बिल्कुल. भाई बहन कभी भी एक दूसरे के लिए गलत नहीं होते. ठीक है, और बुरा भी नहीं सोचते, उनको भी दुख होता है. फर्क सिर्फ क्या आता है, दरमियान में आ जाती है मैं, दरमियान में आ जाती है ईगो, दरमियान में आ जाती है जिद, और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें एक दूसरे से दूर कर देते हैं.
0: एग्जैक्टली. वो दोज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स. ओके,
1: बिल्कुल. ये और ये शामिल होते हैं.
0: बिल्कुल. तो हम ये भी देखते हैं कि बाज दफा आपकी, आपके भाई या बहन को आपकी जरूरत हो, लेकिन लेकिन क्या पता उनकी अना आड़े आ रही है या आपकी अना आड़े आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ बात ना कर पा रहे हो. तो कीप कम्युनिकेटिंग. हो सकता है आपके मुंह से निकले हुए कुछ नर्म अल्फाज, कुछ काइंड वर्ड्स, दे आर गोइंग टू मेक देयर डे, देयर लाइफ इजियर इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. डोंट फोर्स रिकॉन्सिलिएशन. अगर आप, यू हैव बीन ड्रिफ्टेड अपार्ट फॉर सो लॉन्ग या फ्यू डेज या वट एवर, डोंट फोर्स के अभी, बिकॉज आई हैव मैसेज यू फर्स्ट, आई हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप. You are forced to, reconcile.
1: कभी कभी होता है कि आप किसी को मैसेज भेजते हो, वो उसी का जवाब नहीं देगा. कभी कभी ताल्लुकात इतने गहरे, मतलब चोट इतनी गहरी होती है, या ताल्लुकात इस तरह से टूटे हुए होते हैं कि उनको जोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है. तो हौसला, सब्र और बर्दाश्त के साथ इन रिश्तों को जोड़ें, ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं.
0: एग्जैक्टली
1: कभी
0: बिल्कुल,
1: उस
0: क्रिएट न्यू मेमोरीज, क्योंकि दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक लिसनर्स,
1: जिंदगी में
0: जैसे अफशा ने कहा.
1: बिल्कुल.
0: और इसके साथ ही इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हमारे प्रोग्राम का, लाइव प्रोग्राम द फैमिली मैटर्स शो का टाइम खत्म हो रहा है. वी आर सैड टू साइन ऑफ, बट वी हैव टू, क्योंकि हम जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीक आएंगे इंशाल्लाह.
1: और ये हमारे पास सवाल भी होंगे कि बताएं आपको हमारा लाइव प्रोग्राम कैसे लगा.
0: आई एम लीविंग यू विद व्हाट काइंड ऑफ सिबलिंग रिलेशनशिप डू यू वांट टू हैव नाउ, नॉट सिंपली

0: Move for 10 आ गया है This Girl Can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक कोई प्रेशर नहीं कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं आप भी ज्वाइन करें सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10
2: अस्सलामु अलैकुम यू आर लिसनिंग टू इंस्पायर 105.1 FM वी विल नाउ बी प्लेइंग द हदीथ एंड द दुआस
3: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال قالوا يا رسول الله آو الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Some people asked Allah's Messenger, whose Islam is the best? i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.